0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक।
1: सामाजिक सञ्जालजी छानले जाँझीमरी बुझीमरी ब्याङ्गैन आधिकारिक प्रोफाइल मात्र फलोलना खैबै बिनी लिङ्क खुल्दिउ भन्दा उइसु सु खन क्या खलो सुजी पिमिलो खन यामु बिमारी छानले खोना दे खुल्दिब वेबसाइट ना यूआरएल चेक लना आख्या घटना तल आपिबै लागि समय समयरी आफैना पासपोर्ट फेरदिल परिमो नुई तोय तारी शङ्ख लैदी भिसा बैङ्गरी याई मरी तुरन्त खबर लना
2: सतर्क तन ठगे तब त क्या जोगिना
3: सिद्धार्थ बैङ्गर क्याले जनहितरी जारी सन्देश
4: सिद्धार्थ बैङ्क सम्बन्ध सधैँभरिलाई।

बीमा को लाभ दिए आपको कमाई को लाभ लेने मौका आज बनो सानिमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अधिकर्ता सानिमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले जियो।

0: रेडियो रेडियो दीदी बहिनी को समय सूचक हो।
1: अहिले बिहानको ठीक 8 बज्यो।

लसो फ्याफुल्ला तामाङ्गे लेगेदाङ छोरङ्गाम लगाइरी राङनिदा दिनमुला रेडियो थाहा संचार 99.4 मेगाहर्ज ला सोला को न्यामला तामसोर लिसावा गीताङ थोबन राङलाङगोन संगीत पमला गीताङ सेंखेनङा संचुब्लोन प्राविधिक रोमला सुरेश पौडेल तिनीला गीताङ बिहीबार ला गीताङ हिना बिहीबार को नुङनिसे गुइकेला गीताङ सिंहमन हाबमला तामाङ गुइरि बिहीबार लोलोलो विद्याला रचना कदि लोलोलो माध्यम गेमसे किनमन नुङनिसे गीताङ दि दोबन हाबमला तिनीङनिसे तामाङ दाजङ सियोसो गेमसे गोर्की राप तोसेला मुला विषम लोलोलो सन्देश ला हुआ दिन थोसे हवा मुला गीतांग दंगन से ती बर निवन मुला सुगर की हुआ गेम से रंग से सन बर हम सुला छाड़ी सुहाई गन से किन मला मुला तामंग चलचित्र खासु गेम से

0: बीमा को लाभ दी आफ्नो कमाई को लाभ लिने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंसुरेन्स को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंसुरेन्स खुले जियौ।
1: निकट मा दिदी बहिनी, विकट मा दिदी बहिनी, यो रेडियो दिदी बहिनी।

बीमा को लाभ दी आफ्नो कमाई को लाभ लिने मौका आज बनौ सानीमा रिलायंस लाइफ इंसुरेंस को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंसुरेंस खुले जियौ।

जनहित का लागी नेपाल सरकार महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्रालय को सहयोग रेडियो दीदी बहिनी 95.2 मेगाहर्ज को सहकारी में कुष्मा नगरपालिका पर्वत

0: हाम्रो होइन ढुक्क हुँ प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्सुरेन्सकै अभिकर्ता बनाऊ।
1: प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्सुरेन्स लिमिटेड।
2: टेक्सस इन्टरनेशनल कलेज, अ

0: दिन-दिन भी बोल रहा नहीं है, बाल का तो पैसा वाला थोड़े दिन तो समय दे।
1: इन तो पूरा मन की टेंशन लगा हो, आज तुम्हें बाइक नहीं छोड़ दूँ, आई विल ड्रॉप यू।
2: कौन सा?

Wanna go? नेपाली रेडियो नेटवर्क रेडियो एनआरएन 99.1 मा यो हो फिल्मी मेलोडी।

क्लासिक टेक को वाईफाई 6 राउटर नाम एक काम अनेक शक्तिशाली 4 एंटीनामा वाइड कवरेज 5G स्ट्रेंथ लो लेटेंसी र फास्ट स्पीड सबे अस्त्र को शक्ति बोकेको 200 Mbps को इंटरनेट अब 3 महीना का लागि मात्र 3300 रुपैयाँ मा साथमा आईपीटीवी मात्र 250 प्रति महीना बुकिंग को लागि 9801004477 शर्तहरू लागू हुनेछन् क्लासिक टेक छोयो कि चल्यो